प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मौसम का जादू छा गया है। कभी भारी वर्षा जीवन को तहत नहत कर देती है तो कभी इस बारिश के बिना जीवन सूखा रह जाता है। ये बरखा रानी ऐसे ही रिमझिम बरसती जा और हर किसी को सुकून देती जा। ये भीगा मौसम हर किसी को प्यारा लगता है। दोस्तों, इस मौसम के बारे में जो गीत हैं उनके बारे में तो क्या कहें।

दिल ने पुकारा प्रोग्राम में अभी एक बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने सुना, जो था फिल्म पाकीज़ा से। गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था कमाल अमरोही ने और संगीत से सजाया था गुलाम मोहम्मद ने। दोस्तों, मौसम आते जाते रहते हैं। इस मौसम की एक खासियत होती है, मौसम जैसे इस सृष्टि से जुड़े होते हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी से, हर एक इंसान के मन से भी जुड़े होते हैं। जिंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी गम आते हैं। ये खुशियां गम आते जाते रहते हैं। खुशियों के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पर गम भरी जिंदगी बिताए नहीं बीतती। जब खुशियां होती हैं तो मानो वो ठंडी हवाओं की तरह होती है। ऐसा लगता है कि ऐसी हवाएं कभी जाए नहीं। ये खुशियां बारिश की बूंदों जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि धीमे धीमे गिरती रहे हमारी जिंदगी में। तो कभी गम आ जाते हैं तो लंबी गर्मियों की तरह ये गम की जिंदगी खत्म ही नहीं होती। बस ये मौसम और जिंदगी इस तरह जुड़े हुए हैं।

दिल पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म मॉडर्न गर्ल से। गाया था मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत से सजाया था रवि ने। ये प्यार का मौसम तो हर किसी की जिंदगी का खास मौसम होता है। इस मौसम में दोनों के सिवा तीसरे का कोई स्थान नहीं होता। सुबह शाम किसी के प्यार में गुमसुम रहता है हर कोई, न सर्दी न गर्मी न बारिश, बस बाहर तूफान और अंदर भी तूफान।

दिल पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने सुना फिल्म तू नहीं और सही इस का गाना, जो गाया था आशा भोंसले और मोहम्मद रफी ने, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था रवि ने। दोस्तों, ये रंग भरे बादलों का मौसम कभी न जाए ऐसी हर किसी की तमन्ना रहती है, मगर ये मौसम, ये प्यार के मौसम कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। फिर आते हैं कुछ रस्म रिवाज, जमाने के कुछ बंधन और ढेर सारी जिम्मेदारियां। दोस्तों, बाकी कुछ भी हो, मौसम तो चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं।

0: शाबाश। मैं रुनीता।
1: जी मलकायन।
0: हमने सुना है कि तुम शायरा भी हो। सावन की रुत है, इस रंगीले मौसम पर कुछ कहा हो तो सुनाओ।
1: इरशाद सराखों पर।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म नूर जहां से, गाया था सुमन कल्याणपुर ने, गीत था शकील बदायूनी का और संगीत से सजाया था रोशन ने। रंगे बचपन, रंगे जवानी, रंगे मोहब्बत, रंगे जिम्मेदारी, रंगे बुढ़ापा और आखिरकार रंगे मौत। दोस्तों, ये रंगीन जिंदगी जीते जीते इस रंग भरी दुनिया से अलविदा कहना ही पड़ता है। ये जीवन का मौसम कभी खत्म हो जाता है और कब खत्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, शायद फिर से नया जन्म लेने के वास्ते।

दिल पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अनोखा डांस से, गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, ये मौसमों का क्या कहना, मौसम आते जाते हैं, जीवन मिलते हैं, खत्म होते हैं और जिंदगी भी खत्म होती है। मौसम की तरह ये जिंदगी की रस्में कस्में आती जाती है, हर किसी की अलग कहानी है, आनी जानी है ये। चलिए हंसते मुस्कुराते बिताएंगे जो मिली ये जिंदगानी है। ऐसे ही प्यारे नगमे सुनकर हम भी ये इस मौसम की तरह खुश हो जाएंगे। तब तक नमस्कार।

प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में सभी प्यारे श्रोताओं को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मौसम का जादू छा गया है। कभी भारी वर्षा जीवन को तहत नहत कर देती है तो कभी इस बारिश के बिना जीवन सूखा रह जाता है। ये बरखा रानी ऐसे ही रिमझिम बरसती जा और हर किसी को सुकून देती जा। ये भीगा मौसम हर किसी को प्यारा लगता है। दोस्तों, इस मौसम के बारे में जो गीत हैं उनके बारे में तो क्या कहें।

दिल ने पुकारा प्रोग्राम में अभी एक बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने सुना, जो था फिल्म पाकीज़ा से। गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था कमाल अमरोही ने और संगीत से सजाया था गुलाम मोहम्मद ने। दोस्तों, मौसम आते जाते रहते हैं। इस मौसम की एक खासियत होती है, मौसम जैसे इस सृष्टि से जुड़े होते हैं, वैसे ही इंसान की जिंदगी से, हर एक इंसान के मन से भी जुड़े होते हैं। जिंदगी में कभी खुशियां आती है, कभी गम आते हैं। ये खुशियां गम आते जाते रहते हैं। खुशियों के दिन इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, पर गम भरी जिंदगी बिताए नहीं बीतती। जब खुशियां होती हैं तो मानो वो ठंडी हवाओं की तरह होती है। ऐसा लगता है कि ऐसी हवाएं कभी जाए नहीं। ये खुशियां बारिश की बूंदों जैसी लगती है, ऐसा लगता है कि धीमे धीमे गिरती रहे हमारी जिंदगी में। तो कभी गम आ जाते हैं तो लंबी गर्मियों की तरह ये गम की जिंदगी खत्म ही नहीं होती। बस ये मौसम और जिंदगी इस तरह जुड़े हुए हैं।

दिली पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म मॉडर्न गर्ल से। गाया था मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने, संगीत से सजाया था रवि ने। ये प्यार का मौसम तो हर किसी की जिंदगी का खास मौसम होता है। इस मौसम में दोनों के सिवा तीसरे का कोई स्थान नहीं होता। सुबह शाम किसी के प्यार में गुमसुम रहता है हर कोई, न सर्दी न गर्मी न बारिश, बस बाहर तूफान और अंदर भी तूफान।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने सुना फिल्म तू नहीं और सही इस का गाना, जो गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा था रवि ने। दोस्तों, ये रंग भरे बादलों का मौसम कभी न जाए ऐसी हर किसी की तमन्ना रहती है, मगर ये मौसम, ये प्यार के मौसम कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। फिर आते हैं कुछ रस्म रिवाज, जमाने के कुछ बंधन और ढेर सारी जिम्मेदारियां। दोस्तों, बाकी कुछ भी हो, मौसम तो चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं।

0: शाबाश। मैं रुनीता।
1: जी मलिका यानम।
0: हमने सुना है कि तुम शायरा भी हो। सावन की रुत है, इस रंगीले मौसम पर कुछ कहा हो तो सुनाओ।
1: इरशाद सराखों पर।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म नूर जहां से, गाया था सुमन कल्याणपुर ने, गीत था शकील बदायूनी का और संगीत से सजाया था रोशन ने। रंगे बचपन रंगे जवानी, रंगे मोहब्बत रंगे जिम्मेदारी, रंगे बुढ़ापा और आखिरकार रंगे मौत। दोस्तों ये रंगीन जिंदगी जीते जीते इस रंग भरी दुनिया से अलविदा कहना ही पड़ता है। ये जीवन का मौसम कभी खत्म हो जाता है और कब खत्म हो जाता है ये पता ही नहीं चलता, शायद फिर से नया जन्म लेने के वास्ते।

दिल पुकारा इस प्रोग्राम में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म अनोखा दान से, गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। मैं हूँ प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, ये मौसमों का क्या कहना, मौसम आते जाते हैं, जीवन मिलते हैं खत्म होते हैं और जिंदगी भी खत्म होती है। मौसम की तरह ये जिंदगी की रस्में कस्में आती जाती है, हर किसी की अलग कहानी है, आनी जानी है ये। चलिए हंसते मुस्कुराते बिताएंगे जो मिली ये जिंदगानी है। ऐसे ही प्यारे नगमे सुनकर हम भी ये इस मौसम की तरह खुश हो जाएंगे। तब तक नमस्कार।

0: भविष्य में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: बता दूं?
1: हाँ, हाँ,
0: हाँ, हाँ। वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।